0: का कोना हर।
1: World Inco festivity offer अब pound host एक वर्ष का 200 Mbps international net TV साथ में dual band router Nokia Beacon 1.1 mesh router और net TV set-top box मात्र ₹12 प्रति महीना में सर्थ हरु लागू होने चं छिटो बनेगा ये World Inco।

0: ए नानी, कता हिँड्यौ छाता ओढेर? हतारमा छौ त?
1: एसआर इलेक्ट्रोनिक्स एलजी सोरुम हिँडेको नि दाइ।
0: एसआर इलेक्ट्रोनिक्स एलजी सोरुम।
2: 3 बज्यो।

शानो उदासी को सा जिंदगी रंगजाड़ी का सन मेरा मन का रहर हर तिमी संग को बिछोड़ में टुक्रिए को ये मोटो तिम्रो जजर को लियो छाती चरखिए को छ मेरो साथ पाउँदा संसार पाए जाई गर्ने तिमी कति रन्छ होला मेरो यादमा कति रन्छ होला मेरो सम्झनामा कुरे है माया कुरे आउने छु म छिट्टै फर्केर

आरबीटी महिला 60 54 28 98 पुरुष 60 54 28 99 स्वर रामजी खाड सूर्यप्रसाद भट्टराई र पुलकला बिसी लय होमनाथ कुंवर शब्द उमेश कुंवर विशेष सल्लाहकार सुमधुर स्वर का धनी गुलमेली ध्रुव कुंवर